यो दशैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेलिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जड़ा, साथ 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दशैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: जुनसुकै ठाउँबाट पठाएको पैसा तुरन्त भुक्तान दिइने व्यवस्था।
1: फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ फकुन्डे।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 0364 41 6024।

0: सुनोस ना, आइए हम लोग आने में दुई बजे का छह
1: इस समय को साथ में जेतु सुनसादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िए पांच गरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: सधैं सामान्य कपड़ा लगाएर हिड़ने मं आज तो राम्रो कोट पैंट लगाएर हिड़का छौ तो ये राम्रो कोट पैंट कहाँ सिलायो तिमीले
2: दिमाग हुनु पर्छ दिमाग कपड़ा जस्तो कुरा सधैं सिलाइदैन परेक बेला में मात्र सिलाइन्छ त्यसैले राम्रो कपड़ा सिलाउने टेलरिंग छनोट गर्नुपर्छ मेरो छनोट चाहिँ एई वालिङ में रहेको स्टाइल शॉर्टिंग सुटिंग टेलरिंग हो
1: हामी कहाँ दौरा सुरुवाल आधुनिक डिजाइन का कोट पैंट स्कूल कलेज तथा संपूर्ण अफिसियल कपड़ा दक्ष कारीगर तैयार गरिन्छ साथै इमर्जेन्सी कपड़ा र रेडीमेड कोट पैंट पनि उपलब्ध छ
2: प्रोप्राइटर बीपी चोक को रामुदाई स्टाइल शॉर्टिंग सुटिंग टेलरिंग सेंटर वालिंग 8 मोड गरिमा बैंक को ओरालो
1: मोबाइल 98135 56496

0: बारिस्टा प्राक्टिकल ट्रेनिंग एएफए सर्टिफिकेशन र इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप सहित जर्मनी र यूएई मा 100% जॉब प्लेसमेंट
1: कफी को सिप विदेश को अवसर डाफे संग करियर को नया सफर डाफे हॉस्पिटलिटी एकेडमी सिकेडुंगा पोखरा
0: संपर्क मोबाइल 9801030260 र फोन 0167531866
1: डाफे हॉस्पिटलिटी एकेडमी सेपिंग हॉस्पिटलिटी लीडर्स
2: रेडियो आदिखोला 105.4

0: सुनिश ना अमा नौ बजे छ
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको पांच घरेता कुना को लाइन जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

को अवसर साथ ही हर एक महीना होने भाग्यशाली उपहार आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जितने मौका साइड बाई साइड और मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर किन्दा इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी और सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल निःशुल्क डिश वॉशर किन्दा 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दसैं को खुशी घर घर में उपहार।

दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जना, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।